बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091 5

0: नरेन दादु मैं तो अपना फोन आई कि डर से आ गई नो है भौजी कहाँ बाटी
1: ओ गोंदी में सुटल बाटी बाबू चोली न भरी
0: भौजी कहाँ से काटे अपना हरक आदर पावे तो सफा सुखर बने लो बाटी तर फिर काटी तो जा रहा ना अपना हन
2: यहाँ पोली भूको कत लगो नानी अपना एम्बुलेंस है खबर तो करना बाटा कटा बेर में को आप ना हो
0: ना से भौजी हमारे बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई दिन गुआरा हना जिन से रेगी वो नरेश दादू एम्बुलेंस में ना समय लागे से था लगा के को मोटरसाइकिल बाक लसी उन्हें में बैठा कर भौजी है ना सर पर उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला तक खाना जात थे दिए न्यू इट ना स्वयं सेविका दीदी
0: हो अब ना ठीक कली डॉक्टर और निकट सम गरमेन कुछ से खवाई हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाएकला सपवा कटलक अंगाना स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक लुगा गरगहना घरी पेटी मुन्द्री बाकलसे फाफर करारी गेरमने अप्रेलेसे झन समस्या बिना भेल कोसे गेरमने आन शान्त रह सहयोग कर पठा क्युमने सपवा कटलक ठाउसे ऊपर दौडीले कस ख भन्नाथे कठ असिक कर्णसे रक्त संसारमा समस्या होइसक्था जेहीले करबेल सपवा दशलक शरीरको भाग काट ख फाक पर्न अवस्थाथे आइसक्था
4: सर्पदंश सम्बन्धी भरपर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा ह्यार सेभदिथा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं
7: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
8: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
7: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
8: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
9: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmctikapur@gmail.com
10: टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टिकापुर अस्पताल टिकापुर कैलाली

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेन ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 98046 77417।

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झलै फटाका आजी ठ काकना हो बाबा फ्यो ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहेर
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुई थी जरम भर भर बरैती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झोलै फटा कै ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो त कहाँ टीकापुर म रलक रटगे यहाँ झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबू पेंसिल रहीन ना झोला फाटल हुईन कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना सिया कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाये
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तुम्हें

0: टेलिटाइम
1: याद गर्वी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपारके तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठिक नै हुइल घाउ खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
2: ए रुक रुक रुक
3: के भयो किन कराएको यस्तो
2: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे
4: डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीज को फ्री एक्सेस पनि
2: हो र हो नि एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
5: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 #डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे ठारू भाषा खोज खबर में यहां उक्रन स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। भजनगर पालिका के प्रमुख उकरण से नई अनियमितता असूली करपना घोटाला 66,58,000 आंतरिक आय सुविधामय ओराइल। इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर से हुलाक सेवा मार्फत राहदानी वितरण शुरू। सरकार से देहल जिम्मेवारी पूरा करना हुलाक कार्यालय की प्रतिबद्धता। रेबीज वृद्धा के खोप अभाव से शुरू पश्चिम में समस्या। प्रणाली प्रदेश में आगामी आर्थिक वर्षा के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। उवास देश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग में वर्षा हुई ना उत्तराई में गर्मी बढ़ना। पूरा खबर स्थानीय तह के राजनैतिक और प्रशासनिक नेतृत्व मन से पालिका के आर्थिक अनियमितता हुईलक पागिलबा। कैलाली के भजनी नगर पालिका में 66,58,474 असूल कर पर्ना करके घोटाला हुईलबा। पालिका के बिरुजू 5,28,00,000 नांगलबा। स्थानीय तह के प्रशासनिक और वित्तीय प्रणाली है नियंत्रण करना जिम्मेवारी पैलक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। राजनीतिक नेतृत्व करना प्रमुख हो उप प्रमुख नई अनियमितमा लागल पाछे ऐसी हुईलक हो। महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन 2081-82 में असिन तथ्यांक देख पड़ल बा। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीलम कुमार न्यूपाने उत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा करके अपनह लेलक 3,75,555 रूपया हो। वाड़ा समिति के बैठक और अनुगमन समिति के बैठक में समेत उपस्थिति जनायल 28 बैठक से भत्ता बुझलक ओर से कर बाहेक के 24,862 रूपया असूल करे पर्ना प्रतिवेदन में लिखल बा। थारू सांस्कृतिक प्रवर्धन शीर्षक में छुट्टियाल बजेट काठमांडू के आर्यन एडवर्टाइजिंग एजेंसी मार्फत 5 विद्यालय में सड़क नाटक देखायल समेत प्रति समेत काठमांडू के आरएन एडवर्टाइजिंग एजेंसी मार्फत 500 विद्यालय में सड़क नाटक देखाइले और से 99,600 के दर से भुगतानी फिल्बा। रमाइलो बात तक आवकल से 500 नाटक है नगर प्रमुख उप प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत से 14 पटक अनुगमन करलक भत्ता बुझगेल बा। 500 नाटक प्रमुख सहित के 4 जाने अनुगमन करबेर फे प्रति अनुगमन 1,000 के दर से 20,000 रूपया हुई पर्नामा 14 पटक अनुगमन करल पागिलबा। 99,450 रूपया अनुगमन भत्ता समेत बुझगिल प्रतिवेदन में उल्लेख करल बा। उसके उपप्रमुख विद्यालय सचेतना कार्यक्रम के लाख छुट्यागिल 4,70,700 रूपया समेत काठमांडू के मैक्स समेत काठमांडू के से समेत छुट्यागिलक ऐसे के ये पैसा फेसमेट मैक्स क्रियाशन प्रणाली मार्फत 10 विद्यालय में प्रोजेक्टर मार्फत कार्यक्रम देखा गेल। दोनों काम खरीद निर्णय शाखा के टिप्पणी कार्यपालिका की निर्णय हो। प्रतिस्पर्धा में कुछ नहीं हेरके सोझ देलक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत से अनियमितता करलक प्रतिवेदन में जना गेल बा। प्रमुख से करलक अनुगमन में वार्षिक खर्च 9,67,000 रूपया रहल सफेन अनुगमन के फोटो फे नहीं भेटागिल उल्लेख करगिल बा। भजनी में 400 किलोमीटर के दूरी में रलक भारत के हरिद्वार भ्रमण में नगर प्रमुख उप प्रमुख से 1,16,000 रूपया खर्च करल बाट। उप प्रमुख राजू तिरुआ से अपना भारत के हरिद्वार जाइबेर खर्च हुईला को बिरजू आयल तिरे पर्ना बटोले बाट। एक साथ उप प्रमुख के मोबाइल खर्च 66,000 नगर प्रमुख के लैपटॉप खर्चा 1,55,000 लिखलवा। एक व्यक्ति के कार्यालय के कामकाज में ड्राइवर फे समेत गाड़ी भाड़ा लेलक पागिलवा। इसी के भाड़ा में लेके 1 वर्ष में 5,56,500 रूपया खर्च हुई बटवागिलवा। कार्यपालिका सदस्य और कर्मचारियों का नियम विपरीत भत्ता लेना करल बाटै असिके लेलक भत्ता फे समेत 2,05,000 समेत लेखा परीक्षक के क्रम में असूल कर्न देख परल बा। मनो कार्यपालिका सदस्य गणेश कुमार बिकाभर 2081 भदौ 17 असोज 15 गते कार्यपालिका बैठक में उपस्थित हुके फे समेत काठमाडौं भ्रमण के काज हे समेत बनाके 30,000 से लेके 800 रूपया समेत लेलक पागिल बा। योजना महागबेर काठमाडौं गैल कहती नगरपालिका की 9 जाने वाड़ा सदस्य हो 5 जाने वाड़ा अध्यक्ष से 2,12,600 रूपया यातायात खर्च बुझल बाटे। पशु शाखा के 3 जाने कर्मचारी समेत 5,00,000 बजेट में मछी पालन प्रबंधन कार्यक्रम अनुगमन कर खर्च केल 44,000 रूपया बुझगेल बा। प्रमुख उग्र नै मन परी करतल पासे पालिका के आर्थिक सुशासन भंग होइल कर्मचारी हुक्रा बटोइटियाल बाटे। रसिके धेर मसमेती बाढ़ी प्रभावित क्षेत्र कहके चिन्जिना भजनी नगरपालिका वर्षभरिक आन्तरिक आमदानी 2,77,48,000 रूपया केलबा। मनु यहाँ के अधिकांश सुविधा 1,05,13,000 सवारी साधन मरमत में 73,42,000 रूपया ईंधन खर्च में 83,11,000 रूपया खर्च हुईलबा। सेवा निर्वृत ट्रलक शिक्षक ओ समय तलबी विधा में अध्ययन हुईलक कर्मचारी हुकरण समेत पोशाक भत्ता उपलब्ध कराइल प्रतिवेदन में लिखलबा। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर बनाके तमाम खाल के अनियमितता करलक ओ देखाइल स्थानीय रामनारायण चौधरी के कहाइबा। खोजखर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछे फेर से बी सुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टिगाप्र एफएम।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849585808।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बावै। सुरपश्चिम प्रदेशमा रेबिज विरुद्ध के खोप अभाव हुलेको से सेवाग्राही हुक्रा समस्यामा परल बाटै प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा रेबिज विरुद्ध के खोप अभाव हुइल पाछे बिरामी हुक्रा प्रभावित हुइल के होइ। कुकुर, ओस्तक, गिदार तथा अरू जनावर के टोकाइसे तत्काल लगाई पर्ना खोप अस्पतालमा उपलब्ध नै हुइल पाछे उपचार के लाग पुगल सेवाग्राही हुक्रा समस्यामा परल बाटै धनगढ़ स्थित प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्राश्रय समेत सुदूरपश्चिम केल नै हुके नेपालभर खोप उपलब्ध कराई नै सकलाक जनाइल बा। आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र के जनस्वास्थ्य अधिकृत महेश भण्डारी के प्रदेश के सक्कु अस्पतालमा रेबिज विरुद्ध के खोप उपलब्ध हुई नै सकलाक बटोइटियाल बाटै। खोप आपूर्तिमा केन्द्र के सेती अस्पताल, टीकापुर अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल ओ नौथो जिल्ला के तमाम जिल्ला ओ समेत स्वास्थ्य चौकी में खोप उपलब्ध कराइटियाल बा। प्रदेश के तमाम अस्पताल में खोप अभाव के कारण कैयों बिरम्या हुक्रा निजी स्वास्थ्य संस्था में महंगा शुल्क तिर्के खोप लगाइन बाध्य पुगिल बाटै। कर्णाली प्रदेश सरकार से आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक करल बा। काली कर्णाली मुख्यमन्त्री एमलाल कडेलले प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरलबाटै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्रदेश प्रमुखले वाचन गर्न परम्परा रहती आइलस फेन नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न सभामा उपस्थित समेत हुके प्रदेश प्रमुख एगराज जोशी हे असहज हुल पासे मुख्यमन्त्री कडेल अपनह वाचन करल के हुए। प्रदेश सरकार के नीति तथा कार्यक्रममा समेत गेल अधिकांश विषयगत विषयहीन यन्त्रता रूपमा आगे बढ़ेना कहलबा कलसे कतिपय विगत के अधूरा व अपूरा दिति तथा कार्यक्रम हे लौ रूपमा देख परलबा कलसे बाँकी प्रतिबद्धता फे समेत जाहिर करल बतागिलबा। मुलुक के पश्चिमी क्षेत्र आसपासमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहलदिउ चापे प्रणाली तथा स्थानीय वायु के प्रभाव के कारण देश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभागमा वर्षा हुन तथा तराई के कुछ क्षेत्रमा गर्मी बढ़न सम्भावना बा। जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार हाल गण्डकी और कर्णाली प्रदेश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभागमा साधारणतया मौसम बदलन बाकलसे बाँकी पहाड़ी भूभागमा आंशिक मौसम बदलन हो। तराई के अधिकांश क्षेत्रमा मुख्यतया मौसम सफा रहना कहलबा। कोशी बागमती गण्डकी कर्णाली ओ सुरपश्चिम प्रदेश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभागमा एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा हुई रहलबा। इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर से हुलाक मार्फत राहदानी वितरण शुरू करलबा। इलाका हुलाक कार्यालय टीकापुर संघे समन्वय सहकार्यमा आज से राहदानी हुलाक मार्फत वितरण शुरू कर गिलेखो। पहल दिन सात जहन से राहदानी इलाका हुलाक कार्यालय टीकापुर हे वितरण के लाख हस्तांतरण करके हुलाक मार्फत राहदानी वितरण के काम शुरू कर इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर के प्रमुख तारनाथ पनेरू जानकारी देने बाटे। राष्ट्रीय सभा के बैठक माफे प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह नेपाल भारत सीमा के विषय में देलक अभिव्यक्ति के समेत विरोध प्रतिपक्षी दल हुकर से अवरोध करल पासे समेत स्थगित बनलबा। प्रतिनिधि सभा के अटवार के बैठक में प्रधानमंत्री शाह प्रधानमंत्री हुई पासे नई था पैनु प्रधान भारत फे नेपाल के जग्गा के नहीं हुके नेपाल फे भारत के जग्गा ढेर ठाउँमा मिचलबा कहकी देहल अभिव्यक्ति के विरोध करती। प्रतिपक्षी दल हुकर लगातार राष्ट्रीय सभा में विरोध करते आयल बाट सभा के बैठक शुरू हुई लगते सांसद हुकरा उठ के विरोध जनायल रह। बैठक में नेपाली कांग्रेस के सांसद सुनील बहादुर थापा से प्रतिनिधि सभा में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के अपरिपक्वता गैर जिम्मेवारी तथ्यहीन समेत अभिव्यक्ति देलक और राष्ट्रहित विपरीत के काम करल कहती क्षमा याचना करे पर्ना बतोले बाट। खोजखरमा एक गरी विश्राम विश्राम पाछ फेर से भी सुन्ते रवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
3: जानकी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना।
4: नेपालको संविधानको भाग तीन मौलिक हकको धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075 बाल श्रम ऐन 2056 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराइएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वतः बदर हुने भएकोले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर ग्यारेज होटल कारखाना गिट्टी बालुवा घरेलु कामदार गाड़ीमा सहचालक नलगाउन साथै धूम्रपान मध्यपान सुर्तीजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बाल बालिकालाई संलग्न नगर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। यदि कसैबाट कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही हुने बेहोरा सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
3: अध्यक्ष गणेश चौधरी, बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका जानकी कैलाली।
5: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
6: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
5: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
7: याद गर्बी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा।
0: मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपारके तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
7: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046477417।
0: विश्राम पछि फेर से स्वागत बा। राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने और भारत के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता होइल बा। भेट पासे प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल के पहिल छिमेकी नीति अन्तर्गत के एक प्राथमिकता साझेदार राष्ट्र रहलक ओर से दुनू देश बीच समेत रहलक विशेष ओ बहुमायामिक सम्बन्ध है। अबिन फे उच्च स्तरमा पुगेन लौवा सरकार संगे सहकार्य गर्न उत्सुक रहल बटोले बाटै भेटमा अवसरमा उहाँकन बीच नेपाल भारत सम्बन्ध ओ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ओ भारतीय जनता पार्टी भाजपा बीच के सम्बन्ध दुई देश बीच के आपसी हित के साथे विविध आयाम के विषयमा छलफल हुइती रहल बा। यो अवसरमा भारतीय विदेश मन्त्री एक समेत डाक्टर एस जयशंकर प्रधानमन्त्री मोदी के प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार समेत अजित डोभाल विदेश सचिव विक्रम मिश्रा लगायत के उपस्थिति रहकलसे नेपाल की ओर से सभापति लामिछाने वहां के धर्मपत्नी निकिता पौडेल रासोपा के नेता द्वय विपिन आचार्य ओ दीपक बोहरा तथा नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास संगे उच्च अधिकारी हुकरण के सहभागिता रह। ओ गत शनिचर के भारत के उत्तर प्रदेश कुशीनगर से उद्धार करल 453 जने नेपाली हुकरण के ठगी की घटना में रूपन्देही प्रहरी से 5 जहन के संलग्नता देखल गती कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएल बा। प्रारंभिक पूछताछ और अनुसंधान के क्रम में वहां हुकरण संलग्नता देखल गती रूपन्देही प्रहरी से ठगी मुद्दा में कार्रवाई प्रक्रिया आगे बढ़ेलक हो। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से भसी नगरपालिका के प्रमुख हुकरण से नए अनियमितता असूली कर पर्ना घोटाला 66,58,000 आंतरिक आय सुविधामय ओरायल इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर से हुलाक सेवा मार्फत राहदानी वितरण शुरू सरकार से देहल जिम्मेवारी पूरा करना हुलाक कार्यालय की प्रतिबद्धता रेबीज वृद्धा के खोप के अभाव से शुरू पश्चिम महासमस्या कर्णाली प्रदेश के आगामी आर्थिक वर्षा के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हो देश के हिमाली क्षेत्र में वर्षा हुई तराई में भर गर्मी बढ़ना बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकबी अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाक्रम सुनतीरा विराम राम।

0: ए ए रुक रुक रुक
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
2: इन्सिलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीजको फ्री एक्सेस पनि
1: हो र
0: हो नि इन्सिलमा अब मात्र 799 मै सबै अनलिमिटेड
3: ओहो आजै यो सुपर भ्यालू प्याक एस्ट्रिक 123 डायल गरी वा एनसेल एप मगाई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो
5: कोट पीट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरजस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैसे नाई देना बोले नाई देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
4: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
5: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा

0: संपर्क करी ओ सीधा अदालत में थे जाय से जय।
1: हिंसा अपने फेनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।
2: रूप खोजने धेरे रूप खोजने

0: ओहट हेर बुढ़िया बरखा समय थे बखारिक मुह का रुकल बाकी मुसुआ आयल कलश आब मुसुआ खुशी सब पथे आई सकता
1: समझनो घरक अंदर से बाहर से कस्ता का तहिल बा काट पर ना रह
0: असी करी हर बुढ़िया वो सिन्हो कल से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पका कर बासी खाई दूसरा असल परिवार मन मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर दी कनी हुई
1: हुई था वो बुढ़वा असी जाला मदर ध्यान ध्यान पोहर झपास भी था उमा काम नुख बैठल रह सकते ना
0: वह और सेटा कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू मई मिलकर घरक आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुकर से सांप मुस्कुसू के पैठनी सेकना में तो चबदार दूसरा घरक आंजर पांजर फसफार वो सफा फील से सांप अना का उष्टा कम हो जाए
1: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
2: साफ बरखा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था इ मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना फिलकोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग आई सक
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: पर कान्छाशालाको बिहाको न्यू त आएको छ कसो हो त जाने विचार छ कि नै त
7: आफ्ना कान्छा भाइको बिहा नगइकन पनि भएन जाउँ भने भुवाको मंगलसूत्र पन भाँची गयो
6: यतिकै लागि त सामुएल जोलस बनेको हैन बरु अहिलेै जाउँ एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइएला छन् त्यहाँ
7: आज त सन्त्याका बाले मनकै बुढो हर्यो हो त बाई जाउँ
8: सामुएल ज्वेलर्स सुनचारीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचारी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ प्रोप्राइटर टिहारी सिंह सुनार सम्पर्क नम्बर 9868442108 9846349261

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झलै फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा था।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोलै फटा कई था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लंग वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन। ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुही।
1: लिया लिया मैं अब भी जेबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग। हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलतू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
0: ला फिर यो गाड़ी ले धोखा दिने भयो जहिले पनि बैटरी कै समस्या यो टीकापुर मा पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेन्सन मा भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहिन छ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्याक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर मा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टीकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
6: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 9848518228

0: मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आने भाई छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामी विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: नाता छावा सांपन कुछ नहीं कराए सम सांप कुछ नहीं करता ले वो अपन ही चल गया था कुछ कराए था वो सब कुछ सांप दिखा है फिर नहीं रहता
2: दिखा हो कि नहीं हो का कसी कसी ना कंदाई
3: ले नेपाल में पाँच दिन आप दिखा सांपन का विषय मसूं एक थोड़ा ठह गरे जा जो उन खास कह कर रातिक समय में घर भीतर बैठा सेक था ये कटला से निबटाई फिर से आकर तर कटला पास है देह भाग जो निचलना कह कर सास ठहर जो निशेक ना में से लक्का हुई सेक था और रठह डोम जो उन बड़ा रिशाह में रिक रठह इनकर फाट फुले था डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह कर संजय ध्यान देख पड़ता निकर कटला से फिर लक्वा हुई सेक था वो और रठह कैदी जाटक सांप निकर कटला कला से कटला भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत फिर पाती होकर रकत बहना हुई सेक था उस समय का हमारे देश तराई सबको भूभाग में पा देना बगोक ने न फुनकार ना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा।
4: बर्खा छा को अनाज बिग्रिना समय में तापन का कटाई अथवा दसाई का घटना ढूर मिला कर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण तापन का बचारा नाश विदेश तापन का दसाई का घटना ढूर मिला कर लग पा दे
5: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नी रहा वह फिर यदि सब पर दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिख सकती था।
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसंधान केन्द्र संघ को सहकार्य में रोटरी इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमांडू मिडटाउन का साथ साथ ही विश्वभर का रोटरी फ्रेंड्स एवं पार्टनर क्लब द्वारा जनहित का लागी प्रस्तुत संदेश।

जय गुरु बाबा। घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपने के मन की आवाज, समाज के लक्षण आवेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीका पर FM ऐसे की एक मेगाहर्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम मझेरी के सलाह के बैठक सकू रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संगन स्वागत के संगे अभिवादन कर चाहो मै मिशन अमी के बैठक के साथ देख रही बाबू रत्नापुर मगर और मई बाटो अपने अपने संग्रिया मै मिशन संगारी कसिम हाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल हुई भी आराम हुई भी कना मई सोचले बाटो और चाहटो फे और संगारे यी तराई में आज एकदम गर्मी हुईना बाघ के मौसम विद हो जानकारी करले बाटे आज एकदम घाम हुई बाहर सार लगे और आज एकदम ज्यादा गर्मी हुईना बाघ के कहते बाटे और हिमाल और पहाड़ और कहर कहर कहर पानी बरसना बा आंधी हुरियना बा कह के फेन कहे गिलवा तर तराई में चाहिए गर्मी हुईना बा कही गिलवा हुई तो ई चीज से फेन अपने ध्यान रवि कहे कि गर्मी फेन समस्या हो आंधी हुरी फिर समस्या हो पानी फेन ज्यादा पर्ल से समस्या हो तमारे ई बेला में एकदम सुरक्षित रवि पर अपन ठाव से जसिन जेकर ठाव में जसिन अवस्था बा मेरा एक उहे तरीका से अपने के अपने सुरक्षित रवि का नाम आप कहना चाहत हूँ। तो आज के दिन विशेष करके गर्मी के समय में जुरार महसूस करती गर्मी के समय में शीतल महसूस करती अपने के अपन टैलेंट अपन प्रतिभा गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला सारी से चिड़ी चुरुगन की आवाज जानवर की आवाज नेतन के नकल कैको कैरिकेचर को भी टैलेंट को भी प्रतिभा वाकल इस कार्यक्रम में सहभागी जनाई का नाम आप हार्दिक निवेदन करना चाह रहा हूँ। और संगे हमने लगभग लगभग जेठ महीना के हमने मध्य पे क्रॉस कहके लगभग लगभग लास्ट के आगे एक हफ्ता में बाटी के अब हमारथन कुल लगभग लगभग हमारथन अब 8-10 दिन बाकी बा ई महीना के पड़ल और ई महीना फेफे विदाई करना बेला तो असार लग जाए खेती किसानी के समय एकदम हुईटी बाई समय हुईटी बा काटी बाटो अवके जे जहां रवि स्वस्थ रवि व्यस्त रवि अपन शरीर है स्वास्थ्य ख्याल करती रवि का नाम आप लोगों को कहना चाहम कहे कि अपने के स्वास्थ्य ने सबसे बड़ा धन हो तो अपन स्वास्थ्य बढ़िया रही कल से हर कुछ बढ़िया रही स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रही कल से हमारे धन कोई भी चीज मजा नहीं रही कहे कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रही तो हमन कुछ काम नहीं करास लगे ना कुछ खवास लगी ना कुछ प्यास लगी ना कुछ रमाइलो का रास लगी कुछ भी नहीं करना मन लगी तो हमारे हमारे सबसे पहले अपन स्वास्थ्य ही ध्यान दी स्वास्थ्य ध्यान दे कि चेकअप कर से पकड़ फिर हमारे हरेक चीज है सामना करे सकब हरेक चीज है बांटे सकब हरेक चीज है खुशहाली शेयर करे सकब हरेक चीज के सेलिब्रेशन करे सकब का नाम अपने कहना चाहत हूँ। तो ई टंटलापुर घाम बा शीतर शीतर महसूस बा तो ई टंटलापुर घाम है अपने के शीतर बनेना सबसे बड़ा रहान बा तो हमारे टेलीफोन लाइन खुल रही बा कहना जानकारी करती है ठेक गीत जोड़ब गीत के पास मैंने बाटू डायल करते कर भी 091-5-61-255 के लाइन खुले बा तब समय इन्जॉय करी ई रमाइलो गीत गीत के पास मैंने बाटू डायल करते कर भी 091-5-61-255।

हजुर बेग्लै रमाइलो गीतको वाचन पनि स्वागत भयो कार्यक्रममा। कार्यक्रममा बाटोमा मिसन मिके साथ धेरै बाबु रत्नपुर मगर यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz जुमार पसुन्टी बाटी कार्यक्रम मझेरी मझेरी कनाइ सिनाङ हो जहाँ अपने कर हमार भेट हो कि रमाइलो गफ गर्न ठाउँ कोही भी ट्यालेन्ट प्रस्तुत गर्न हो आजकै दिन त आफ्नो ज्ञापन कोही भी ट्यालेन्ट प्रस्तुत गरेर कार्यक्रममा सहभागी जनाइ 091-5161255 अर्थात 0915612255 लाइन एकदमै खुल्ला भयो कार्यक्रममा सहभागी जनाइबी गरेर आफ्नै कर हमार रमाइलो सहभागिता दिए त जे जहाँ भी कार्यक्रममा सहभागी जनाइबी आफ्नै कर हमार रमाइलो सहभागिता दिए रमाइलो गफ दिए रमाइलो बातचित दिए त अपने हमार कार्यक्रममा चाहिँ डायल चाहिँ गरेको 091-5161255 के लाइन अर्थात 0915612255 यी नम्बर हो यी नम्बरमा रहिके आफ्नै कर हमार रमाइलो गफ हुई रमाइलो बातचित हुई फटाफट चाहिँ डायल गरेर पर्न एकदमै जरुरी दिए त यी गर्मी समय कुछ अच्छा सदुपयोग कर कार्यक्रम में सहभागी जनाइटे कर्मी कार्यक्रम में इटे कर्मी साथ में मजा मजा गीत संगीत में सुनने बाटू अथवा गर्मी में कब्जा करती बाटी पक्कई फिर अल्छी लागत हुई अल्छी लगना बेला में मजा मजा गीत सुना के मैं अपने कन जरूर फैन हमारे मनोरंजन दिलाप करना मैं चाहम रिवर हमारे गीत जोड़ एक ठो राज कना गीत भक्कर काल सार्वजनिक खुल गीत यानी कि गैल काल गैल काल काल बीस गैल काल बीस गते दिन चाहिए सार्वजनिक खुल गीत चाहिए हरिलाल चौधरी और समीक्षा चौधरी के आवाज में रहल ई एकदमै नया गीत अपने गलत मैं अठी जोड़ना चाहम गीत के बाद समय नहीं बाटू तो ई गीत सुनी हमारे एक ठो राज कैसी राज हो गीत गीत के पास मई नहीं बाटू डाल चाहे करते कर भी सुनने 91-5161255 लाइन खुलाई बाटू

0: हजुर तोहर यादव बहुतायत दिनका दिन बिल्कुल रमाइलो बिजुर्ली कार्यक्रममा बाटोमा मिसन भर्खर रेडियो खरल विकालसे कार्यक्रम सन्तीबाटी मझेरी मझेरी का नसिनाङ नहो जहाँ अपने घर हमार भेटो के रमाइलो गफ गर्न छौँ ऊ आङना हो जुन आङनामा आफ्नो घर हमार गफ हुई ठाउँ मजा मजा गीत संगीत हाम्रो सुन्थी आफ्नो घरका सँगै मजा मजा बातचित गर्थे त आफ्नो हाम्रो सँगै गफ गरेकलाई अपन ट्यालेन्ट अपन प्रतिभा कोही भी चिज सुनाएकलाई कार्यक्रममा सहभागी जनाएको पनि एकदमै जरुरी रह त आफ्नो हाम्रो डायल गरेक पनि 0915-61-2750 कोयलबाट लाइन मेमै बोल गर्न चाहन्छु हजुर राम राम
1: राम राम राम राम हजुर राम राम
0: नारायणजी कैसिन हाल खबर आज बडा घाम बाना नारायणजी
1: हजुर
0: आज मौसम विदुक्र करारे तराईमा एकदमै ज्यादा घाम रहे यानि कि हाम्रो ठाउँमा एकदमै ज्यादा घाम रहना बा और वहाँ हिमाल और पहाड और कुछ कुछ ठाउँमा पानी बर्सना बा कहिके त मारे तराई मन कि गर्मी से एकदमै बचेक पर्ना बा कहाँ आज किन हम हन
1: हजुर
0: तब मारे एकदमै ज्यादा घाम बा नै
1: हजुर
0: तरे से फिर बाफ मरना ऊपर से फिर मतलब आँच मरना तरे से फिर आँच मरना बिल्कुल बीचे बीच में रहो ना हमरे
1: हजुर तेरा बाबा हेरता
0: काम कसिन कौजा कली
1: तेरा बाके हेरता होई
0: तेरा बाके हेरता होई
1: हाँ
0: ए अच्छा तब मारे कौजा करती बाती अब नेंगती बाती की कहूँ बिसाइटी अपने
1: बिसाइटी हजुर मैं बहुमुखी कैंपस से
0: वहाँ लिंड रुखा बरी खोई नहीं हो कहूँ कसी के बिसाइटी
1: कहीं बाहरी छुट्टा बात छुट छुट उसका बेलक रुखा बात डाले का कटे बरन के रुखा बाजे रे
0: बिसाइ बन जाए ना वहाँ लिंग मजा से
1: हजुर
0: ओके कार्य हवा हवा चलता की नहीं आज के दिन
1: थोड़ा बहुत आ रही हवा था
0: साबुन फेन वो हवा काम नहीं करती हुई आज के गर्मी कारण नहीं
1: हजुर
0: ओके कार्यक्रममा सहभागी जनले खुसी लागल आज चाहिँ हमहन का सुनै बिटो
1: छोटा छोटा गाना सुनाले मै गर
0: ली ली बिल्कुल है बिल्कुल अपने के गीत सुने के लगा टूर बाटी हमरे ली शुरू कई धा दे

0: ජන බෙල තලිල දනි හත්තල පැඝර ජන බෙල දනි හත්තල පැඝර ජන බෙල තලි යෙති හතරුලි
1: දේවද ධන්‍යවාද कार्यक्रममा गीत सुनैली अब भाई हाम्रो एकठो गीत बजाब अपने लाग अपने किन किन सुनैबी नाम ली
0: सबसे पहले अपने है और रत्नापुर मगर है
1: धन्यवाद हमारे ओर से अपने है
0: और गत्ता भी नाथ पांच संगरन है और कार्यक्रम सुने जता है नारायण चिन्ना चिन्ना बाय बाय कर दू सर आप एक दिन अपने से भेट घाट करब कहते अपने के स्टाफ के बाटी कभी भी अपने जानकारी नहीं करते भेट घाट मन से बोली चाली तो होइ कह पड़ल ने एक दिन भेट घाट कर भी तो कैसे लागी मजा लागी कि नहीं लागी
1: ठीक है बा नारायण जी मैं अपने से जरूर फिर हमें भेट घाट करना ही चाह पहले से जरूर फिर भेट डराब नहीं अपने भेटना चाहबी कल से फेन अब हमारे ऑफिस में आई सक भी या अपने हमन कहूं भी भेटना चाहबी कल से हमारे फोन नंबर ले जाके फिर अपने हमन कॉल कर सक भी हमारे भेट कर सक अब नहीं
0: अब अपने कहा ऑफिस में जेल मजा रहे कि अपना कहूं तो उतारे में मजा रहे कि कैसे कहा हो अब अपने चौदह नंबर दीपू कटे में आई तो अपने जो कह पर वहां पांच बजे समाचार में समाचार बोलते जे लोमडी बाबू से भेटे रहे एक दिन और एक कहबल भाग्य कुंवर अपने जय जय बाटी कह पड़ल रत्नापुर मगर बहिने हेटे की दीदी हेटे वहीं से एक तो भेट भाट कर अब तो वो फलक हो अपने को तो कभी नहीं कथी मैं
1: सक्कू जाने सक्कू जान हम भेट कर भी तो ऑफिस में आई भी नहीं
0: हजुर हजुर
1: और वहां रिंग तो मैं चौदह नंबर जो ठाव बताई थी वहां रिंग तो मैं एकदम वहां रिंग मरिक ठाउँ हो वहाँ कफी पिना ठाउँ हो वहाँ लिङ्का मरिक
0: हजुर
1: मैं दिन के कफी पिए जित हूँ लगभग दुई से साढ़े दुई बजे के बीच में वहाँ लिङ अपने भेटे सकथिन हिन लिली ठीक बा हमरे जरूर फिर मिला अपने
0: शनिवार के परौ आइन त अफिस म जाइ मिले
1: ली ठीक है नारायण जी मैं
0: सल्लाह सुझाव कर दू मैं अपना अनुरोध करतु कहा
1: ली ली ढेव देव धन्यवाद और दिन हम जरूर मिलत कहती अब अगले विदा हुई राम राम
0: राम राम
1: वहां पर गए नारायण नारायण चौधरी जी रमाइलो का एकदम माया करते हैं हमन से भेटना चाहता ही मैं फिर वहां है ना भेट पैली हूँ वहां है ना चिन्ह ले हूँ वहां है ना देख ले हूँ वहां चाहिए मतलब हमन से माया करना मना

0: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ल झोला है, मरम्मत करा जाए। एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
1: प्रोपराइटर रामप्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
2: ए रुक रुक रुक,
3: के भयो, किन कराएको यस्तो
2: दाई? यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे।
4: इन्सेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीज को फ्री एक्सेस पनि
2: हो र? हो नि, इन्सेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
5: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक *123 हास डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस्। एनसेल नेपालकै लागि।
6: राहुल कमल आइन बुखाइल बाटो त
7: हेरि न काका, साई फुला टुरे बारीमा गेल रही सपो काट देली, बीस निकाल देवी कि कै के लैके आयल बाटो।
6: सपो कटलक बीसक उपचार कर त सर्वदम सब उपचार केन्द्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई, वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ। दिखा सपो कटलक हो कि नहीं हो के पता लगा ख, सर्वदम सब उपचार में प्रयोग है ना, एंटी भेनम से उपचार कर।
7: सर्पदंश उपचार केन्द्र के विषय में मैं फिर सुनल त रहूँ, तर
6: कुछ दिन कही हरियाणा तुरंत उपचार केन्द्र ले जा रही। नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी भेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था, अत्यक्त चिंता नहीं पड़त
7: भाई। ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई, मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकली बात।
6: एम्बुलेंस आपूंगा समय लागत के था, मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केन्द्र में ले जा दी। ले बाबू संदेश झट्ट बाहर आता।
8: सर्पदंश प्रभावित जिल्ला में बेरमेन का समय में जो उपचार के ख ज्ञान जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केन्द्र संचालन में बा। यी उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था। सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न होकर सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटीभेनम निःशुल्क उपलब्ध करेलबा। आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र संपर्क नंबर ठहर पठा। सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेर सेटा।
9: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
10: गरेको भए होइन, गरिहाल्नुस्। यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
11: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनेन्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
10: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
11: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
10: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
11: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
12: युनाइटेड एकाडेमी माध्यम

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जनऊ का घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैला बाट, आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्टा फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
3: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
4: असार 6 गते पहिलो शनिबार
3: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिला को गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
2: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
4: डाक्टर आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
3: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637772।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नै सेकी जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नै हुईबी भ्रष्टाचार करुया मनै न खुलके विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।
2: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
3: मैं नहीं जाइस वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800046774417।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सक्कू भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुलके विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाख सक्कू जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी सन्देश।
2: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो।
3: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
2: पढाइ हुने विषयहरू
4: अनिवार्य नेपाली,
2: अनिवार्य अंग्रेजी,
4: सामाजिक गणित,
2: ऐच्छिक लेखाशास्त्र,
4: ऐच्छिक वित्तशास्त्र,
2: ऐच्छिक अर्थशास्त्र,
4: कम्प्युटर विज्ञान।
2: भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू
4: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि,
2: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि,
4: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि,
2: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म। सीमित सीट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77।
3: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।

के पान से मर लूटूं। कल आके कर जाने नई नकबान से मर लूटूं। सीधा साधा मीकिन है प्रेम के रोग लगे लूटूं।

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
4: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो, यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था, तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: सामुदायिक रेडियो टीका पूरा एफएम के संजक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी हुकन स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उग्र सामुदायिक रेडियो टीकापुरा एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapuraefm.org मोबाइल एप हम पात्र नेपाली पात्र में फिर सुन बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से जानकी गांवपालिका आर्थिक वर्ष 2083-84 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक अधिकांश पूरा नीति तथा कार्यक्रम निरंतरता सुदूरपश्चिम के बजेट वितरणमुखी से भ्यो नतीजा मुख्य विवाह रोजगारी सृजना कर पर्णा सरकारवाला के कहे राष्ट्रीय विकास प्रणाली सुदृढ़ कर पर्णमा नेपाल की जोड़ ओ एशियन गेम्स छनौट नेपाल मलेसिया देला 276 रन के लक्ष्य कैलालीकी जानकी गांवपालिकाकी आर्थिक वर्ष 2083-84 की नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कलबाट गांवपालिकाकी 18 गांव सभाकी बिहीबार बैठक पहिलो बैठकमा गांवपालिकाकी अध्यक्ष गणेश चौधरी आगामी आर्थिक वर्षकी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कलबाट गांवपालिकाकी विद्यालय उमर समूहकी सक्कु बालबालिकाकी विद्यालयमा पहुँच सुनिश्चित गर्ती विद्यार्थी भर्ना सिकाई उपलब्धि टिकाऊ दर अभिवृद्धि गर्ना दलित तथा विपन्न विद्यार्थी छात्रा भित्री एवं आवश्यक शैक्षिक सहयोग उपलब्ध करेन नीति नल्लबाट शिक्षा के गुणस्तर और सिकाई उपलब्धि सुधार के लाग नतीजा विश्लेषण निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन प्रगति समीक्षा तथा आधारभूत कक्षा 8 माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 लक्षित शैक्षिक सुधार कार्यक्रम संचालन गर्न नीति पैना गाउँपालिकालेबाट गाउँपालिका आर्थिक वर्ष 2084-85 भित्र पोषण मैत्री पालिका के घोषणा गर्न गाउँपालिका के 15 सिंहयाकी अस्पताल स्थापना केलाक पहल गर्न देहरूसिन रोग के स्क्रीनिंग शिविर संचालन गर्न सिकल सेल प्रभावित के निशुल्क बीमा कार्यक्रम निरन्तरता दिन पैना गाउँपालिका के नीति तथा कार्यक्रम मूल्य कलबाट बाल मैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका के घोषणा गर्न आवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्न लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण के अवधारणमा काम गर्न मुक्त कमजोरीकी उत्थान के लागि आवश्यक पहल गर्न नीति लिएरबाट एक घर एक धारा तथा स्वच्छ खाने पानी की अवधारणमा काम गर्न सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरणलाई प्रभावकारी बनाइन अति विपन्न तथा असहाय परिवार के कोनो सदस्य मृत्यु हुना गएपछि सामाजिक सहायता प्रबन्धन गर्न घर भेट कार्यक्रम संचालन नीति फे गाउँपालिका मल्लबाट गाउँपालिका के उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम निरन्तरता दिन बाली बीमा कार्यक्रम लागू गर्न कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चार मलन प्रांगणिक तथा जैविक मलके प्रयोगमा अनुदानको व्यवस्था गर्न बाफे नीति तथा कार्यक्रम समेत गिल्बा मागमा आधारित पशुपन्छी पालन तालिम के आयोजना कलक पशुपन्छी के खोप कार्यक्रम निरन्तरता दिन निशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम संचालन गर्न नीतिफे गाउँपालिकाले लबाट सहकारी संघ संस्था क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड़ दिन सहकारी संस्था दर्ता नियमन मर्जर खारेजी अनुगमन कार्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नाफी नीति तथा कार्यक्रम उल्लेखलबाट गाउँपालिका के भित्रलक होमस्टे प्रबन्धन गर्न स्थानीय मौलिक संस्कृति वेशभूषा खानपान हस्तकला लोककला तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण मार्फत आन्तरिक बाह्य पर्यटन प्रबन्धन गर्न हुलबाट विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षण के क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्न पुरस्कृत गर्न मौसम पूर्वानुमान आधारित पूर्व कार्य तथा समुदायमा आधारित विपद पूर्व तयारी कार्यक्रममा महाप्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न नीति तथा कार्यक्रम उल्लेखलबाट पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ गाउँपालिकाकै प्रशासनिक भवनकै निर्माण केलाक आवश्यक बजेटकै प्रबन्धन गर्न कुशवडाकै भवन निर्माण तथा मर्मत केलाक पहल गर्न गाउँपालिकामा संचालन हुटिरहल अधुरा तथा क्रमगत आयोजना हुन समयमा सम्पन्न गर्न बजेटकै प्रबन्ध गर्न नीति मफे गाउँपालिका हालेरबाट कर संकलनकै दायरा विस्तार गर्न शून्य सहनशीलताकी नीति अवलम्बन गर्दै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूकै जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न नीति मल्लेकलबाट गाउँ सभामा प्रस्तुत कलक नीति तथा कार्यक्रम के उपरको सभाकी सदस्यहरूको आफ्नो विचार धारणा धर्ल रहे सभाकी सदस्यहरूको नीति तथा कार्यक्रममाथि के उप धारणमा छलफल हुल्बाछ गाउँपालिका के आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम सभामसे ध्वनि मत के आधारमा पास कलबाट गाउँसभा के दोस्रो बैठक ऐना असार 5 गते दिन के 1 बजे बैठक गरके पहिलो बैठक परेलबा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकै आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजेट संघीय सरकारकै बजेट समेट्न नै सक्ला काम संविधान त प्रदेश सरकारकै दायित्वकै काम हो। कुछ नवीन योजना संचालन गरे रोजगारी सृजना हो। समयवीर थ प्रदेश परिणासमै पुग्न काम करपर्ना यहाँकै नागरिकीय अपेक्षा गिल्वा अर्थशास्त्री सहप्रधानाध्यापक डाक्टर केशर बहादुर कुंवर कृषि अपरेटरमा रोजगारी वृद्धि हुन प्रतिफल देख्न युवाकी विदेश पलायन रोक्न सिक्न योजनामा बजेट लगानी फे करपर्णा बोटेलोबाट सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयकी सहप्रधानाध्यापक डाक्टर नाथुराम चौधरी फे प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षादेखि वहाँ तत्काल रोजगारी देखे सिक्न विषयमा लगानी करपना बोटिलोबाट टीकापुर अस्पताल विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष छपट बहादुर सोडारी प्रदेश सरकार टीकापुर अस्पताल में 100 शैया के बनैन नीति घोषणा कर सकलक तद अनुरूप संगठन सर्वेक्षण करके जनशक्ति व पूर्वाधार विकास करके विशिष्ट कृषि सेवा देपना बोटिलोबाट उद्यमी व्यवसायी क्रफे अबके लगानी में वितरणमुखी से नतिजामुखी हुईपना बोटिलोबाट केरा उत्पादन किसान दीपेन्द्र चौधरी बजेट वितरणमुखी से क्षेत्रगत वस्तुगत रूप में विशिष्टीकरण हुईपना बोटिलोबाट कृषि पर्यटन व्यावसायिक कालू हमाल पर्यटन के प्वाइंट टू प्वाइंट पर्यटकीय क्षेत्र विकास कर सिक्ना सुदूरपश्चिम के पर्यटन व्यवसाय में से सहज फायदा ले सिक्ना बोटिलोबाट प्रदेश सभा के पूर्व सदस्य उमादेवी वादी संघ के विनियोजन निराश बनेल क्षेत्र पूर्ति हुई करना प्रदेश बजेट आईपर्ना बोटिलोबाट टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख बलिराम चौधरी संघ के जीस्टीओ प्राथमिकता में नई पलक अत्यावश्यक कार्योजना प्रदेश में से हुईना पक्षा कर लगफे वहां बोटिलोबाट खोज खबर में घड़ी विश्राम विश्राम पाछ फिर से विश्व तीर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्र सम्पर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
0: प्रहरी बल नेपालके भन्सार छल्लक आशंकमा मुस्ताङकी कोरोला नाकामासी भित्र 774 ठो विद्युतीय सवारी साधन नियन्त्रण मैलाबाट मुस्ताङके जोमसम पर्वतीय कुस्मा ओकासके हेमजा मसे गैलकरात गाडी नियन्त्रण मैलक सशस्त्र प्रहरी बलके प्रवक्ता विष्णु प्रसाद भट्टराई जानकारी दिलबाट गाडी नियन्त्रणमा लिनक सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 33 गुल्म मुस्ताङ म्याग्दी गुल्म नम्बर 25 चण्डीकीगण पर्वत नम्बर 24 के कालिकागढ कास्की मसे सुरक्षाकर्मी परिचार अस्तंकर के नुवाकोटको पासाङ ल्यामु सड़क मसे फिर दुईठो गाड़ी मन नियन्त्रणमा लबाट नेपाल राष्ट्रिय संघीय विकास प्रणाली यहाँ सुदृढ़ बढ़ाईपर्णमा जोड़ देलाबाट बहुपक्षीयताके सुनिश्चितताके निम्ति ओकन अपिहार्य हुलक नेपाली अभिमतमा राष्ट्र संघीय मुख्यालयमा आयोजित बहुपक्षीयताकी भविष्य सन् 2030 के पाचकला राष्ट्र संघीय विकास प्रणाली निर्माण छलफलम संयुक्त राष्ट्र संघीयलाग नेपाल स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा सन् 2030 के चुनौती अवसर सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय संघीय विकास प्रणाली सक्षम बनाईपर्णमा जोड़ देलाबाट न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालकी स्थायी नियुक्ति अनुसार राजदूत थापा विकास प्रणाली केवल बाँकी रगदीको विकास लक्ष्य एसडीजी कार्यान्वयन केला किन्ने हो कि भविष्यकी चुनौती अवसर समेट समेट नागरकी सिद्धुरित करपना बोटिलोबाट उहाँकी राष्ट्र संघीय विकास प्रणाली संस्थागत संरचना किन्ने हो कि साझेदारी हो एकबद्धता मार्फत अभिन प्रभावकारी बनाईपनामा जोड़ दिलोबाट नागरिक समाज युवा शैक्षिक क्षेत्र स्थानीय सरकार निजी क्षेत्र तथा अन्य सरकार हुलक सक्रिय सहभागिता बिना भविष्यमा प्रभावकारी सान्दर्भिक विकास प्रणाली निर्माण गर्न नै सकलक उहाँके काहे रहल रह स्थायी प्रतिनिधि थापा आश गर्न निर्णय हो कि आगामी पुस्ताकेला प्रभावकारी परिणाममुखी बहुपक्षीय प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न बटटी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अभिन सुदृढ़ बनाईपनामा जोड़ दिलबाट खोज खबरमा फेर्से विश्राम विश्राम पाछा फेर्से विश्वन्तिर विश्रामुदायिक रेडियो टीका फोर एफएम
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछा से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल
5: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का

0: खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
1: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
2: डाक्टर आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
0: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
3: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
4: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बञ्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
5: कुशल भुर्तिलकै विस्फोटक सतर प्रहार करपाछ नेपाल सिंगापुरमा जारी एसियन गेम्स पुरूष क्रिकेट छनौट प्रतियोगितामा जित केलाक मलेसिया केलाक 276 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य देलबाट सिंगापुरकै राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा टस हटके पहिलो ब्याटिङ के निम्त फलक नेपाल अनिर्धारित 20 ओभरमा 60 विकेट के क्षतिमा 275 रन बनेलबाट नेपाल केलाक कुशल 126 रन बनेलबाट कुशल 54 बलमा 14 चौका व 8 छक्का के सहयोगमा उक्त रन बनेल रही। यस तहका प्रतियोगिता के लगातार 2रो शतक बनेलक कुशल चीन विरूद्ध के पहिलो खेलमा फेस शतक मर्न रही। T20 3रो शतक बनेला कुशल नेपाल केलाक लगातार 2रो शतक मर्ना पहिलो खेलाड़ी समेत बन्नबाट अस्तका आसिफ शेख 68 रन के अर्धशतकीय इंग्लिश खेल रही। उहाँकी 24 बलमा 5 चौका व 7 छक्का मर्न रही। कप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी 31, सन्दीप जोरा 15 व लोकेश बम 10 व कुशल मल्ल अभिजित 9 रन बनेलबाट बलिङमा मलेसिया के भीर नन्दीप सिंह 3 विकेटबाट विजय उनै ओ कप्तान सायद अजिज 2 विकेटबाट नेपाल समूह एक आफ्नो पहिलो खेलमा चिन्ह 221 रन के हटेल रहे। पहिलो जितसँग नेपालकी एसियन गेममा स्थान बनेला ओरेल रहे। लगातार 2रो हटलक खेपलक चीन बाहिर रहे। मलेसिया के फेरि हिंस्याख नै एसियन गेम्समा स्थान बनेला सेक्लबाट समूह बीमा ओमान, हङकङ, बहराइन र सिंगापुर हलबा। समूह शीर्ष 2 टोली एसियन गेममा छनौट हुने प्रावधान रहलबा। नेपाल मलेसियामा जारी एससीसी महिला प्रिमियर कपमा लगातार 2रो जित निकल्नबाट समूह डी अन्तर्गत बिहिबार हुने खेलमा नेपाल भूटान 51 रन हटेरबाट जितसँग नेपाल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्नबाट हिंसाको समूह पहिलो खेलमा नेपाल कतार 8 विकेट हटेर रहे। जितकेला 114 रन के लक्ष्य पञ्चल भूटान 20 ओभरमा 8 विकेट के क्षतिमा 62 रन के बनेल। भूटान केला देन्द वाग्मो सर्वाधिक 39 रन बन्ने रहे। तके छादो ओम 11 रन जोडलक बाहेक औरा खेलाड़ीके दोहोरो अंकमा रन बनाइन नै सक्ल। बलिङमा नेपालकी रूबिना छेत्री 3 विकेटबाट अस्तक रिया शर्मा 2 ठो कविता कुंवर मनीष उपाध्याय 1 विकेट झर्लबाट हिंसागर टस हटके पहिलो ब्याटिङ की निम्त पाइलक नेपाल 19.5 ओभरमा 2 विकेट की क्षतिमा 113 रन बनेर रहे। नेपाल केलाक सीता राणा मगर सर्वाधिक 37 रन बनेर रहे। रूबिना छेत्री 24, सोनी पार्किनल 13 व सम्झना खड्का के 10 रन बनेर रहे। बलिङमा भूटानकी छिरिङ छ्याङबो सोनाम 3 विकेटबाट कप्तान अन्जु गुरूङ 2 तथा ऋषि चौदेन ओरिया प्रधान 1 विकेटबाट नेपाल समूह 1 3रो खेलमा अन्तिम खेलमा शनिबार हङकङमा खेलीबाट नेपाल रन रेट के आधारमा 1 खेल अगुवाई आखक चरणमा पुग्नबाट 18 देशकी सहभागिता रहला। प्रतियोगितामा समूह डी नेपाल सहित कतार हङकङ व भूटान रहलबा। सहभागी देशमा 4 समूह विभाजन कर्लबाट स्तह समूह ए हो म थाइल्याण्ड म्यानमार जापान बहराइन व मंगोलिया रहलबाट समूह बी युए ओमान चीन फिलिपिन्स व साउदी रहलबाट समूह सी म इण्डोनेसिया मलेसिया कुवेत सिंगापुर रहलबाट समूह शीर्ष 2 टोली क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्न हुलबाट क्वार्टर फाइनल खेलके विजेता एसीसी एसिया कपमा छनौट हुन हुलबाट।

खोज खबर वाली जेना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से एक चो जानकी गांवपालिका के आर्थिक वर्ष 2083-84 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक अधिकांश पूरा नीति तथा कार्यक्रम है निरंतरता सुदूरपश्चिम के बजेट वितरण मुखी से नतीजा मुखी हो युवा रोजगारी सृजना करना हुई पड़ना सरकार वाला टीका है राष्ट्रीय विकास प्रणाली सुदृढ़ करना पड़ना नेपाल जोट एशियन गेम्स छनौट नेपाल मलेसिया दिला 276 रन के लक्ष्य लीजा बक्ला खोज खबर तरह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद डिटिया बक्ला खोज खबर से महिषिता चौधरी बिदा हेटू एक पास 6 बजे की खोज खबर सुन्न सिक्बी सामुदायिक रेडियो टीका प्रशासन सुनती रवि राम राम।

0: टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को टोल भेला संचालन हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को आर्थिक वर्ष 2083-84 मा संचालन हुने वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनौट सम्बन्धी भेला तफसील अनुसार हुने भएकोले सम्बन्धित गाउँ टोल र ब्लकका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। ब्लक नम्बर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 समितिपुर, ज्योतिनगर, दशघरुवा, सबघरुवा, राजीपुर, विपतपुर, दुर्गानगर, एकतानगर र विशालनगर बस्तीहरूका लागि भेला हुने स्थान ज्योतिनगर आधारभूत विद्यालय ज्योतिनगर, जेठ 23 गते बिहान 7:30 बजे। ब्लक नम्बर 1, 2, 3, 14, 17, 18, 19, 20, 21 र शक्तिनगर, शिवनगर, एकतापुर, बाढ़ी पीड़ित, गणेशपुर, तीनघरुवा, भूपू कर्मचारी, भूपू कमैया र चमेलीपुर बस्तीहरूका लागि भेला हुने स्थान टीकापुर कन्या आधारभूत विद्यालय ब्लक नम्बर 18, जेठ 23 गते दिउँसो 2:30 बजे। ब्लक नम्बर 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 23 र व्यवसाय क्षेत्रका लागि भेला हुने स्थान राधाकृष्ण मन्दिर ब्लक नम्बर 9, जेठ 24 गते बिहान 7:30 बजे। ब्लक नम्बर 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25 छेगरखैला र बनगाउँका तीनै पुरुवाको लागि भेला हुने स्थान साईमार्ट अगाडिको सार्वजनिक चोक ब्लक नम्बर 25, जेठ 24 गते दिउँसो 2:30 बजे। टीकापुर नगरपालिका 1 नम्बर वडा कार्यालय।
1: बर्खाक समय छेबा पखारिक मुहका रुपल बाकी मुसुआ आयल कला से आब मुसुआ खुशी सपोर्ट आई सकता
2: ओहो हो निका सबको समझनो घरक अंदर पादा सफा से बाहर से कच्चा का पहिल बा काटा पर ना रहो
1: हाँ असी करी हर बुढ़िया वो सिन्हो कला से काल मिट्टी ना वो तेला रोटी पका का बासी खाई दूसरा सर परिवार मन मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर दी तो नहीं हुई
2: नहीं था वो बुढ़वा असी डाला मगर ध्यान ध्यान पोहर झफास भी था उमा साफ नुख का बैठल रह सकता ना
1: वो हो से तो कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू वो मई मिलकर भरत आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे थे घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर थे सांप मुस्कुसू के पैठनी सेकना में चबदार पड़ल दूसरा घरक आंजर पांजर फसफार वो सफा हुई से साफ ऐना का उत्साह कम हो जाए
2: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
3: साप बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था इ मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना फिलक ओर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निष्कट
4: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर साप मानव बस्ती लग आई सकता
5: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकते था
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: अरे साली अब जिलेबी भी तो खा सको माला गुड़िया दही ले लूँ अब
1: किन मत किन सको खा सको हेरी
0: क्या क्या दही रहूँ
1: सुनो तो क्या बात है
0: हीरो लग गए का होना था यार
2: ठीक बात कर दी यार हीरो
0: अरे साली मेला की हीरो ने घर पर का मेला खेला साली
1: नहीं नहीं भाटू तू कलो मैं बसन नहीं काटे से हीरो जय हीरो
0: चलो तो

मजा आएगा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मजा मज

0: आपसे मेला होते खेल सकली सब चीज खेल सकली नहीं खिलौना झूल सकली साली आप साल से हुई रहे रो दिन बुरता तो वो साली नहीं आप चली कहूँ घरे कहूँ आप
1: चलो
2: करना रहने का
0: नहीं साली हमारे और चलो आज
1: वहाँ दिन तो बाइबल वगैरह ही से
2: अपने के लिए तो महिला मुर्गा मारन की
1: नहीं भाटू अब जी दीदी दीदी अब फिर नहीं कहीं से
0: कहा साली लेकिन तो उन्हें खा ले बोले नहीं बनी
1: तो सुनो टेका दीदी का हाथ चल जी
0: तो वह कल पौने ने खा ले और सकाय में सके लेके पढ़ाई घर
1: हाँ ठीक है बात ठीक है बात ठीक है बात बात खुशी बात
3: आई बुढल्ला सुन्दो कि नै वा नन्दे गुवा जागिलि न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उने ना पट्टा नि पैना त
4: अदि गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाउ
3: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे के कत्रा सुघर बनाकन लबाटी
4: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भातवट खाइ आउ जाइका हु सामुएल ज्वेलर्स म गर गहना बनाइ सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
3: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: रिमाल मेडिकल हल टीकापुरमा मानसिक नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना।
1: काठमाडौँ पाटन अस्पतालका मानसिक नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन अर्याल एमबीबीएस न्याम्स
2: यही जे 23 गते शनिबारका दिन
1: रिमाल मेडिकल हल टीकापुरमा आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा दिइने सेवाहरू जस्तै बेला बेला मुटुको गति बढ्ने, हात खुट्टा काम्ने, झमझमाउने, धेरै पसिना आउने, एक्कासी बेहोस हुने, डर लाग्ने, मनमा छटपटाहट हुने, धेरै झस्किने, तर्सिने वा डराउने, असामान्य रूपमा धेरै टाउको दुख्ने, धेरै रिसाउने, जीव दुख्ने, मांसपेशी वा हात जोर्नीको दुखाई दुब्लाउँदै जाने, कामकाजमा मन नलाग्ने, दिक्क लाग्ने, बेला बेला बेहोस हुने, नराम्रो सपना देख्ने, घाँटीमा केही अट्के जस्तो लाग्ने, छातीमा असजिलो महसुस सुने वा मन स्थिर नहुने, कुनै पनि कुरामा मन नलाग्ने, आत्मगलानी हुने, एक्लै हाँस्ने, मुस्कुराउने, बरबराउने, छारे रोग, मिर्गी रोग, रातिको समयमा धेरै मदिरा सेवन गर्ने, लागू पदार्थको सेवन धेरै गर्ने, बच्चा तथा वृद्धहरूको व्यवहारिक समस्या, ओछ्यानमै पिसाब फेर्ने जस्ता समस्या भएका बिरामीहरू सम्पर्क गर्नुहोला।
1: सम्पर्क रिमाल मेडिकल हल टीकापुर एक कैलाली,
2: डाक्टर आउने दिन जेठ 23 गते शनिबार।
1: सम्पर्क नम्बर 091-5602-67, मोबाइल नम्बर 98-25-69-13-75 र 98-046-71-598।
3: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जै भो? पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जा सेक्ल।
4: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो नी करत का कहीं हो का
3: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनैल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
5: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगी पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार पे लगा जाए।
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।

0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयको सार्वजनिक सुनवाई हुने बारेको सूचना। जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 प्रदान गरेका सेवा, सम्पन्न गरेका काम, योजना र वडा कार्यालयसँग सम्बन्धित विविध विषयमा सार्वजनिक सुनवाई हुने भएकोले तपाईँका गुनासा, प्रश्न वा सुझाव सहित तफसिलको मिति, स्थान र समयमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सरोकारवालाहरू, सेवाग्राहीहरू, गैर सरकारी संस्था, वर्गर, नागरिक समाज, युवा, समाजसेवी, बुद्धिजीवीहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल जेठ 26 गते, समय दिउँसो 2 बजे, स्थान सुवर्णपुर स्थित कृषि भवन, जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय सुवर्णपुर।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
2: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

बिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

भ्रष्टाचार करू या मनन खुल्के विरोध गरी, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग गरी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: ओए रजनी वहाँ बासक नंबर लट्ठी बा दिखाओ का कैसे दिखाओ का
1: मुर्गी दाना देना जा रहा मैं काकर लट्ठी खा देती अब ना
0: एक तो तपावा का मुर्गी ना खा रखे लट्ठी से डिगेले से बक्सा की आनो हाली छत्ता
1: तापन घिसकाई चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस श्याकर बेन घर भीतर आए लागी कल से भगेगी
0: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खादी कहीं का भगाए खुद लखो का
1: पारा में कीड़ा फटिंगा मुंह सांप सिर निचा कर कहीं का फलाम को जारी लगा ले पाते तब पर मुर्गी खेती बुगाई नहीं थे कि बेन अपना ना दाखी दूर बिना
0: हो भी ना था क्या करना हो तब पर देखती कि डर लागा लग ना रही था देव तब पर तो अपन घूम का बारी वो कर गिलता
1: हमरे जेल सांपन से डरे ना नहीं होगी मुखर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चले लगी पति रक्षा करत लाग वह अपन बचाव करत लाग सांप दस ना कर था
2: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाए वा नी जिसके साप मने देख डरे था नी चलाख दूर रह से साप नी दस्त तर मुकुर खैना खाज बाहर निस्क जाना म घास काट बे छाल बे ज्ञान बे छुबे से मने मही मारक लाग बाटा कना सबस्क पट्टी रक्षा कना क्रम म साप दस लाख रठ मने सापन व्यक्ति की मारक लाग रठ उसी का कर बे फिर साप दस लाख रठ